0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्स्याङ एफएम 95 मेगाहर्ज।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

छ्यादलौ रेडियो मर्सिङदी 95 मेगाहर्जले इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सिङदी .org नाना 8 बजे खबर तमुके मर्सिङदी फेते दि खुशमय तमुशोला तेबा म ऐसरी क्लब फेते बेसर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बालमैत्री वडा घोषणा गणतन्त्र दिवस ऐना पूर्व सन्ध्याले सर्वदलीय सेवा आश्रमले खाद्यान्न दिएर फलफूल चुइमो सो वर्ष अन्नपूर्ण आरोहण दिवस लमजुङगरी दोर्जीजी विशेष कार्यक्रमलाई बढी मनिसिमो लमजुङगर यौलो जनादे बालो सौलो जना पर्वतरोहणदे सम्मान लवातैमो लमजुङगरबे व्यस्त नगरपालिका वडा नम्बर 3 बालमैत्री वडा घोषणालाई म सरकारले तयार लभ बालमैत्री नासदमे शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकदी भए 51 वटा सूचक पूरा लभदे बालमा व्यस्त नगरपालिका वडा नम्बर 3 बालमैत्री वडा घोषणालाई म मंगलबार तब बालमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रमले व्यस्त नगरपालिका प्रमुख गुमन सिंह अर्यालजी वडा नम्बर 3 वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर दनाईदे बालमैत्री वडा ओडा बालमैत्री ओडा तब प्रमाण पत्र पिबदे बाल चुवडा बालमैत्री ओडा घोषणा तैम कार्यक्रम दे सम्बोधन लैमरी नगर प्रमुख अर्यालजी कोलमैन अधिकार सुनिश्चित लब नास सहजी बालमैत्री वातावरण बने भई लागि विशेष ध्यान पिल परिपिम थिजी कोलमैन स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा दे स्थायी विकास लागि नगरपालिका निरन्तर के लरिबा बिमरी ओडा दे समेत बालमैत्री बनेवा अभियान थियो वैसो बढीमा बढी परिवा बिम थिएन अनुसार चौभन्दा वैसो पुगौलो ओडा दे घोषणा लै खायम विषय तर तारखा 25 ओडा नम्बर 5 घोषणा लभा तयारी म लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघ लमजुङ जी गणतन्त्र दिवस ऐन पूर्व सन्ध्याले सर्वदलीय सेवा आश्रमले खाद्यान्न दिएर फलफूल चुलो बिहिबार आश्रमलाई थनीमारी संघजी विभिन्न खाद्यान्न सामग्री दिएर फलफूलमै चुलो उद्योग वाणिज्य संघ लमजुङ अध्यक्ष भरत कुमार श्रेष्ठ ऐन अध्यक्षतरी तब कार्यक्रमले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद खनाल ऐन प्रमुख आतिथातरी तलो कार्यक्रमले पैमारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालजी समाजरी मुभा असहाय दिएर संरक्षण ऐन आवश्यक मुभा मिमेन तायो मानवीय भावना चोलपरिवा बिम थेजी सामाजिक सेवामूलक के दे समाजले सकारात्मक सन्देश प्रवाह लभ बिमले थैल्य अभियान दे निरन्तर पिल परिवा आवश्यक मुभा बिम बेसीसा नगरपालिका जी बालगृह भए कोलमैदे स्टेशनरी पिम नगरपालिका जी गणतन्त्र दिवस ऐन पूर्व सन्ध्यारी आदर्श मुणिमेदेर कोलमैमै विकास केन्द्र अध्यक्ष सञ्चालन लैखा बालगृहरी स्टेशनरी सामानमै पिल बिहिबार बेस नगरपालिका भए उपप्रमुख पद्म तमुसु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन अधिकारी कार्यक्रम अग्रिति मेगेन्द्र पोखरेल कोलमैदेर बालिका मुनिमेदेरा कोलमैन साखरबे प्रमुख दुर्गा तमुसो दे बालो टोलीजी बालगृहारी याईमरी सचिव हुमा तमुसो दे स्टेशनरी सामाल पिलो कार्यक्रमरी प्रमुख जिल्लाधिकारी रामकृष्ण कृष्ण प्रसाद खनाल प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्र कुमार बस्नेत लगायत उपस्थिति मोलो लमजुङगर दोर्दी नगरपालिकाले चौ वर्ष अन्नपूर्ण आरोहण दिवस विशेष कार्यक्रमलाई बढी मने बताइमो 76 अन्नपूर्ण आरोहण दिवस ऐन अवसरले लमजुङगर दोर्दी नगरपालिका 3 लम्बै नासारी विशेष कार्यक्रमलाई बढी मने बताइमो पर्यटन प्रबन्धन क्षेत्रले विशेष केलाई खबर ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएशन नेपालले नै आयोजना दिएर गण्डकी प्रदेश उद्योग दिएर पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन बोर्ड दिएर सम्बन्धित नासा थेमैन समन्वयले कार्यक्रम लाल भुइँमो दिवस ऐन अवसरले पर्वतरोहण पूर्णिमा श्रेष्ठदेव बालो सगरमाथा आरोहण लभ लमजुङगर भैयाउलो जानादे विशेष सम्मान लभ कार्यक्रम टानर अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यजी बिमो विश्वर्व सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण लभ लमजुङ रायन सर्वे नरेन्द्र साहिदे र मणिराज तमु दे सम्मान लभ कार्यक्रम तय तय म कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेश उद्योग दिएर पर्यटन मन्त्री यशोधर हिमाल दे बालोय पर्यटन क्षेत्र र विज्ञा पर्यटन व्यवसाय दिएर सरकार वालमैना सहभागिता तय म मौरी पालन सम्बन्धी प्राविधिक शिविर

प्रविधिले आर्थिक रूपान्तरणले प्रमुख आधार रूपले प्रस्तुत लभाव बजेटले बने भए लागि संलग्न अधिकारी मिति समेत जानकारी पुगे। मर्चु माझारी संघीय सांसद चिलवालजी बजेट पेश लभा तिनीबे संयुक्त बैठकले तयारी समेतलाई खाएम तिनीबे थिनेर 4 बजे संयुक्त बैठक थिए बजेर बैठकले प्रतिनिधि चुनाव ऋषि नयाँ संरचना अर्थ मन्त्री डाक्टर सुनि बागलेजी बजेट पेश लसे। मर्संगी फेटे तखोबे लागि छेगयौ फेटे छौ भन्दा उहीसो कर्ब फेटे फेरि देखे।

भेलसा नगरपालिका वडा नम्बर 3 अधिबाल मैत्री ओसा वडा घोषणा गणतन्त्र दिवस हैन पूर्व सन्दर्य सर्वदेशीय असामरिक खाद्यान्न दिएर फलफूल वितरण वृक्षारोपण देवालय बाल गृह स्टेशनरी 13 वर्ष अन्नपूर्ण आरोहण दिवस लमजुङर्व दोर्दिर विशेष कार्यक्रम लैबारी मनिसिमु लमजुङर्व यौलो जान दिवालो सौलो जान पर्वत रोहण मैले सम्मान लबाइमो नानर खबर तमु के मर्संग दिफेते तखोबे लागि छ गयो प्राविधिक थु दिनेश ते धन्यवाद पिमारी फेते कछ ग्याङा खुसी माय तमसियो बिदा किमो रेडियो मर्संग 95 मेगाहर्ज दे इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्संग .org यरिन देलर ओ छादलो

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

एक्सट्रीम इनर्जी टाइम चेंज अहिले ठीक एक बनेको छ एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: समय यही जेट 16 गते शनिबार बिहान 10 बजेबाट।
1: स्थान केयर फार्मेसी बेसर नगरपालिका 7 पुरानो बैंक चौक क्लमजुङ। सम्पर्क 9849068924 9845086780।
0: साथै बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, स्त्री रोग तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा,
1: हार्जोनी विशेषज्ञ सेवा, जनरल फिजिसियन सेवा, ल्याब तथा भिडियो एक्सरे सेवा समेत उपलब्ध छ।

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्स्याङ एफएम 95 मेगाहर्ज एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: Mersang DFM, 95 MHz.

0: स्थान केयर फार्मेसी विश्वर नगरपालिका सात पुरानो बैंक चौक क्लमजुङ सम्पर्क 9849068924 9845086780
1: साथै बाल रोग विशेषज्ञ सेवा स्त्री रोग तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा
0: हार्जोनी विशेषज्ञ सेवा जनरल फिजिसियन सेवा ल्याब तथा भिडियो एक्सरे सेवा समेत उपलब्ध छ।